0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 6 AM
3: अहिले बिहानको 6 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 AM
3: अहिले बिहानको 8 बज्यो।

रेडियो काठमाडौँ 92.1 द्वारा उत्पादित लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणी चन्द्रमणि गौतमको साथमा रेडियो काठमाडौँ नेटवर्कबाट देशैभरि।